0: बस जिस तरह ही हुक्मनामा लिया ते अरदास कीती ते सवेरे अमृत वेले उस तो बाद चंद जी आप ही आशा की वार लाउंदे होंदे सन। मैं कहा महाराज जी तुसी चिंता ना करो असी हाजरी भर मुड़ के असी आशा की वार भी लाई नेत्र बंद करके मैं आशा की वार भी लाउंदा रहा समाप्ति की अरदास होई वो जितना ही खालसाई पंथ बैठा सी सारा जा चुका सी।
1: बोलो श्री
0: एहसास जरूर हो गया बाद चो मन में गल भी आ गई। मैं क्या नहीं ये सारे शहीद सिंह

जित वह सर्व संभाले वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वावन हारे केते तेरे राग परिस्यों कही है केते तेरे गावन हारे गावन तुदनो पवन पणी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख

सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वडियाई, सब सत सब तत् सब चंगियाइया, सिद्धा पुरखा किया वडियाइया, तुद बिन सिद्धि किने न पाईया, कर्म मिले नाहि ठाकुर हाइया, आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरी तेरे भंडारा, जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सुवार नहारा, आसा महला पहला।

नानक नावे गाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुरपास हम कीरे किरम सतगुर।

सुरहाउ। हर जन केवट भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यासु। हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण प्रगासु। जिन हारु हारु हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पासु। जो सतगुर शरण संगत नहीं आई, त्रिग जीवे त्रिग जीवासु। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखासु। धन धन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगासु। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह कुदम।

हर नहारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हौ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर क्या वह हर क्या वह तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तिन का पाओ सब गुवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनिक अनेक अनंता तेरी अनिक करह हर पूजा जी तप तपह जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावह मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निचल करता सोई तुद आपे पावह सोई वरता जी तू आपे करह सोई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सच्यार मैं दासाई जो तू भावे सोई थीसी जो तू दे सोई हो पाई राव सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनु कृपा करहे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लाधा मन मुख गवाया।

शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबे उबास बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काबहु। आप हाथ दै मुहे बचावहु सुखी बसै मोरु परवारा। सेवक सिख सदा कर तारा मोर अच्छा निज कर दै करिय। सब बैरन कौआ सुंदरिय पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें चाट कोई अवर न त्याहूं। जो बर चाहू सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन शत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिय मरण काल का त्रास निवरिय। हु जो सदा हमारे पच्छा श्री आस तुझु करे हो रक्षा। राख ले हो महे राखन हारे साहिब संत सहाये प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर

यो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है तहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दै जचन उपजायो आदंत कै अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो शत्रन को फल मुँह बद कियो कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पहचानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट पर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पहचाने कट कट के पट पट की जाने जब उदकर्क करा कर तारा प्रजा तर्थ तब देह अपारा जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते

नाद असंभु ताका मूड उचारत पिता जा को पेव न पावत बेता ताको कृपा हन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पिव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पहु राव कही पूपा अंडज जेरज से तज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हव बैठा कहूं सिमट पहु शंकर कैठा सिगरी सृष्टि दिखा।

अंगरू दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रन काता जे अस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार से है ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहरिहु ताके ताप तनक मह हरिहु रिद सिद्ध कर मुँह सब हुई दुष्ट छाह छव सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें सुबारा काल फास देता है उबारा जिन नर नाम तिहारू कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दैलिहु उबारी सर्व ठाउर मोह सहाई दुष्ट दुख ते लिहु बचाई खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दैलिहु उबारी सर्व ठाउर मोह सहाई दुष्ट दुख ते लिहु बचाई सुवैया

न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सत बहुपेत कह हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न करो सब तुहे बखान्यो दोहरा।

प्रियस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद इक ओंकार। सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया। शब्दोता गावो हरी केरा मन जिनी वसाया।

त सुख हुआ तित कर अनहद वाजे अनद सुन हो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुन

एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उरतारु तम संसार चरण लग तरिय सब नानक।

तिथे तू समरथ जिथे कोई नाहे उथे तेरी रख अग्नि उधर माहे सुन कै जम के दूत नाए तेरे छड़ जाहे पौज।

0: इतनी सेवा प्रारंभ कर लीजिए। प्रहलाद चुका जी खेमा कार्य योग भाई साहब भाई नवनीत सिंह जी पासों पावन चरण लड़ीवार कथा शरण करी जी। बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक धन धन गुरु नानक।
1: सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुनी निदाना, तुम्हारी

तक बात है कोट परादी तरियारे गुर नानक जिन सुने पेखिया से फिर गर्भास न परियारे गुर नानक जिन सुने पेखिया से फिर गर्भास न परियारे सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ पौड़ी खंड पताल असंख

तुद सिरजी तुद गोई, खंड पताल असंख मैं गणत न हुई। तू करता गोविंद तुद सिरजी तुद गोई, लख चौरासी मेदनी तुझ ही ते होई। एक राजे खान मलूक कह कहावह कोई, एक साहा सदावह संच धन दूजे पत खोई। एक दाते एक मंगते सबना सिर सोई, विन नावै बाजीरिया पियाहावल पिहावल होई। कूड़ निखुटे नानका सच करे सो होई, विन नावै बाजारिया पिहावल होई। कूड़ निखुटे नानका सच करे सो होई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब सतगुरु, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब, कृपालु सतगुरु जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शामा दे दीवान दी हाजरी पर रही गुरु रूप साध संगत जी, आप जी वडभागी हो पावना सहित जुड़ बैठ के गुरु चरणा विच गुरु दियां बख्शिशां खुशियां लै रहे हो। बहुत प्यार दे नाल आप जिया ने अमृत बाणी दा कीर्तन भाई सह भाई हरभजन सिंह जी लहरी तिना दे जत्थे पासों सरवन कीता है। उपरंत जो अज विचार अधीन साड़ी पौड़ी सी मलार राग दी बारहवीं पौड़ी, उसका पाठ आप जी ने सरवन कीता है। इस पौड़ी नाल आए हुए दो श्लोक वो आपां कल विचार चुके हाँ। श्लोक तीसरे गुरुदेव जी दे सन, जिन्हां विच गुरु साहिब जी ने एक कृपा उपदेश कीता सी कि ऐ जीव तू उस अकाल पुरख दे दर नूं भावें नहीं जानदा, पर तेरे अंदर उहदे प्रति खिच पैंदी है, तेरे अंदर उहदे प्रति तड़फ जागदी है, तू उसकी प्राप्ति लई देखण लई तांगदा है। ता तू अपनी मैं नूं छड के अपनी हो नूं छड के अरदास कर, उस अरदास दे सदका ही वाहिगुरु मेहरामत दा मीह एक दिन पाएगा, तेनू गुरु दा परमेश्वर दा दर दिसेगा। जदों तू सहज अवस्था विच आके जिग्यासा विच आके उनू आराधेगा बोलेगा पुकारेगा, ता फिर प्रभु दी कृपा तेरे ते होएगी कि तेनू दा महल दिसेगा, प्रतीत होएगा भी जिथे मैं बैठा जिथे मैं रह रहा ये सारा थां ही उस अकाल पुरख दा, उहदे तो बाहर ही कोई होर नहीं। मैं उसनू किते होर भालदा सां, देखण दी कोशिश करना करदा सां, पर उह तां हर पासे ही विद्यमान है, जिवें हर पासे पानी है। इसे तरह उह नारायण वाहिगुरु परमेश्वर भी हर थां ते है। पौड़ी विच गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी होण, जिहड़ा व्यापक है वो समर्थ किन्ना है, उहदे बारे दसते ने कि उहदी समर्था की है, उन्हें की कुछ सिरजिया है, की कुछ बनाया है, ते किवें वो अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा
अपने प्यारियां दे रहमत करता है, किवें जगत संसार दे वड्डे वड्डे जीव सारे जो भी भिन्नता नजर आती है उस भिन्नता दे पिछे इको ही है जिहड़ा ये बुझ गया वह बाजी जित लैंदा है, नहीं तो संसार बिना बुझे तो खुआर हुंदा है, भीड़े राह औखे राह विच जिवें बंदा भै भीत हुंदा है, इस तरह अणबुझे हुए मनमुख बंदे संसार जगत विच खुआर हुंदे ने। यह पौड़ी विच गुरु साहब जी ने कृपा कीती है। आओ विचारां दी आरंभता तो पहला रसना पवित्र करिए, प्यार सहित उचारण करो अते आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। फिर कृपा करो उचारण करो

इंसानी मन, इंसानी दिमाग कला का बड़ा मुतासर है। भाव शक्ति का कह लिए, ताकत का कह लिए, मुतासर तो भाव है भी बड़ा कायल है, बड़ी छेती प्रभावित हुंदा है। जदों किसी ताकत नू वेखता है, किसी समर्था नू वेखता है। जगत संसार विच वाहिगुरु परमात्मा ने हर एक नू कुछ ना कुछ कला, कला नाम शक्ति दा है, गुण कह लिए, गुण भी एक शक्ति है। कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति दे के भेजिया। ते हर एक प्राणी मात्र किसे दूसरे दे गुण, किसे दूसरे दी कला, किसे दूसरे दी शक्ति तो प्रभावित हुंदा है। उदे तो बड़ा मुतासर हुंदा है भी मैनू कोई इहदे तो जानन लई मिल जाए, इहदी शक्ति दा, इहदी कला दा मैं भी कोई लाभ उठा लवां, मैनू भी कोई लाभ मिल जाए। संसार विच हर धर्म विच इस तरह जो भी धर्म दे आगू ने, धर्म दे पैगंबर ने, धर्म दे पैरोकार ने, असीं उन्हां दे जीवन विच देखदे आं। कोई पैगंबर, कोई पैरोकार, कोई अवतार, गुरु पीर ऐसा नहीं होना कि जिदे नाल उहदी शक्ति दा प्रगटावा ना होया होवे, उहदी करामाती जीवन बाबत ना हुंदा होवे, उहदी समर्था बाबत ना पता लगदा होवे। हर एक बाबत, हर पैगंबर, हर अवतार, हर गुरु पीर संसार जगत अंदर पूजिया ही तां जांदा है ज्यादातर उदी करामात, उदी शक्ति करके। हालांकि रब ते मार्ग ते तुरन वाला हर परमेश्वर दा प्यारा अखौती करामाता दा सदा खंडन करदा है, नाटक चेटक जादूगरिया दा सदा उखंडन करदा है। पर इहदा मतलब ये नहीं कि उदे अंदर परमात्मा दी सत्ता, परमात्मा दी शक्ति निवासती। वो सुते सिद्ध सह सुभाविक जो आखदा है वो करामात ही बन जाता है। उहदा कारण की है? क्योंकि उस करामाती दे नालो जुड़ जाता है जिदे अंदर सारियां कला संपन्न है। हर कला संपूर्ण जे को है उते परिपूर्ण परमात्मा परमेश्वर जिदे नाल, मान लो किसी ने किसी चंगे लिखारी नाल कोई बंदा सहायक बन जाए ना, उहदा मददगार, उहदा हैल्पर बन जाए, ते वो भी कुछ ना कुछ लिखन लग जांदा, उहदे अंदर उहदा गुण आ जांदा। जे कोई किसी कवि दी संगत करदा है, भावें बिल्कुल मूड होवे, जड़ होवे, पर जे वो किसी कवि दी संगत विच रहिंदा है ते वो भी कविता रचन लग जांदा है। जे कोई किसी मल दे संगत विच, पहलवान दी संगत विच रहिंदा है, भावें लड़े ना हो, दा पेच वो भी सिख जांदा है। भाव हर एक इंसान जदों किसी की संगत विच रहिंदा है ना, किसी के संग विच रहिंदा है, ते उहदा गुण, उहदी शक्ति, उहदा प्रभाव उहदे ते पैंदा ही पैंदा है। उहनां कोल इक अद्धा गुण हुंदा है। ते गुरु साहिब जी कहिंदे वी जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरु सर्व कला संपन्न है, जिहड़े अठे पैर उहदी संगत विच आ जांदे, अठे पैर उहदे प्रभाव विच रहिंदे ने, ते आपां किवें कह सकदे आं भी वाहिगुरु समर्थ दी शरण विच रहण वाले नूं कोई ताकत नहीं मिलेगी, कोई गुण नहीं मिलेगा, कोई परमात्मा दी कृपा नहीं मिलेगी। जे एक आम इंसान दे संग करन दे नाल एक आम इंसान दे जीवन अंदर प्रभाव पैंदा है, इंसान जे इंसान दा प्रभाव कबूलदा है, केवल इंसान दा नहीं, क्योंकि मनुखी दिमाग ऐसा है, मन ऐसा जिदे नाल जुड़िया है, उहदा प्रभाव कबूल लैंदा। बाणी कहिंदी जैसा सेवे तैसा होए, कि जिवें दी इस सेवा सेवादार तिथे चिंतन करदा है, जिवें दे किसे दे संग विच रहिंदा उस तरह दा इह हो जांदा है। ते जे अकाल पुरख वाहिगुरु सर्व कला संपन्न है, जे कोई उहदा धुरों बख्शिश कीता होया, भेजिया होया कोई गुरु पीर महात्मा पैगंबर औलिया उतार, कि असीं इह किवें इनकारी हो सकते हैं भी उहदे ते परमात्मा दी कला नहीं वापरदी। उहदी रसना ते भी ताकत है, उहदे नेत्रां विच भी ताकत है, उहदे कर्म विच भी ताकत है, जिस पासे बोलदा है उहदा बोल ही हुक्म बन जांदा, कानून बन जांदा। उहदे वचन जिहड़े ने उह सारी कायनात नूं पूरियां करन दे लई उस पासे ला देंदे ने। इह मैं तारज कीती कि इह
परमात्मा दे संग विच रहन वालियां दे प्रभाव अधीन रहन वालियां विच भी ताकत आ जांदी है। ते अकाल पुरख वाहिगुरु आप किड्डा वड्डा समर्थ है। एक तां उहदे विच गुण है भी उह सर्वज्ञ है, सर्व व्यापक भी जिन्हों कहने हैं, अंतर जामता भी जिन्हों कहने हैं। सर्व व्यापक का मतलब है कोई दुनिया का ऐसा कोना नहीं, कोई ऐसा थान नहीं कि जिथे परमात्मा की शक्ति है नहीं, परमात्मा विद्यामान नहीं, परमात्मा विराजमान नहीं, ऐसी कोई दुनिया से थान नहीं। वो हर थान से है, ताही ता वो सर्वशक्तिमान है ना, क्योंकि वह सर्व व्यापक है। वेखो जो चीज जिन्नी पसरी हुई है, जिन्नी फैली हुई है, उन्नी वो ताकतवर है, उन्नी वो पावर दे विच है, ते जिथे मर्जी उहदे तो आप लाभ लै सकते हैं। असी तां अज उस युग विच रहिंदे आ, उस विज्ञान की शिखरता दे युग विच रहिंदे आ कि जिथे हर रोज ही करामातां वापरदियां, हर रोज ही करामाता है। विज्ञान दे युग विच विज्ञान दियां करामातां किते कोई घट ने किन्नियां ने, पर सारा कुछ करनहार दा वर्तारा जिहड़ा अदृश्य है उहदे बाबत आपां किवें किंतु कर सकते हैं। जे उहदे बनाए हुए मनुख इन्नियां काढ़ां कढ़दे ने कि वह करामात तों घट नहीं, ते वह भी इस तरह अपने आप नूं फैला रहे ने ताकत दे नाल। विज्ञान भी अज यही तां यतन कर रही है कि विज्ञान सर्व व्यापक बन जाए, अंतर जामता आ जाए, ते काफी हद तक विज्ञान ने इन्ना ताकतां दे उत्ते अपना प्रभाव पा लिया है। सर्व व्यापकता, अज जेड़ा मर्जी बंदा संसार दे किसे कोने ते बैठा होवे, किसे ने उहदी जानकारी लैनी होवे, उहनूं देखना होवे, वेखना होवे, मिलना होवे, गलबात करनी होवे, एक उंगल दे नाल ही सारे कार्य हो जांदे ने। सर्व व्यापकता नहीं, इह विज्ञान दी सर्व व्यापकता नहीं भी हर थां ते पसर गया, उन्हें अपने आप में इन्ना पसार लिया है। तो यह सर्व व्यापकता दे नाल फिर उस सर्वज्ञ होकर शक्तिमान भी किन्ना, दुनिया के किसी कोने ते बैठे हुए मनुख नूं बचाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, यह ताकत किदे कोल है। तो अकाल पुरख वाहगुरु परमेश्वर की यह ताकत निरंतर तो साइंस कुछ नहीं नवा करती, वह जो कुछ भी करती है इस कुदरत दे विच वह विद्यामान है, वह छुपया होया है, उसनूं बस प्रगट करके जां उहदी खोज करके अपने नाम थले उस चीज नूं प्रचार दी प्रसार दी है। पर है सारा कुछ उही जो इस कुदरत दे विच अकाल पुरख वाहिगुरु ने आप अपनी शक्ति नाल बनाया है। सब कुछ उहदा ही है क्योंकि वह आप सर्वज्ञ है। उहनूं तां साइंस नूं तां फिर किसी साधन की यंत्र की लोड़ पैंदी है, हालांकि कोशिशां ही हो रही ने भी एडी ताकत हो जाए साइंस कोल, विज्ञान कोल, कि किसी भी मनुख किसी भी जीव नूं अज मिलन वास्ते किसी फोन का किसी स्क्रीन की लोड़ तो पैंदी है। यह भी यतन हो रहे ने भी यह भी जीवन चो निकल जान, सीधा मनुख सिचवत चितवे, सीधा मनुख विचारे ते उहदे नाल ही जिदे जिदे बारे सोचे उहदे नाल उहदा कनैक्शन जुड़ जाए। यह इथों तक खोजा यह सारिया सर्वगता तो आईया ने, सर्व व्यापकता तो आईया ने, जिहड़े गुण परमात्मा परमेश्वर दे हन, सर्वशक्तिमान दे हन। ते सर्वशक्तिमान वाले पासे हर इंसान तुरना चाहता, हर इंसान दे अंदर ये बुनियादी भुखा ने, भावे कोई किते भी बैठा है उहनूं चाहीदा, उह भी यह मंगता है भी मेरे कोल इन्नी कु ताकत हो, मैं सब कुछ जान लवां, सब कुछ देख लवां, सब कुछ कर सकां, क्योंकि जिथों आया है ना उहदा असला जिहड़ा है उह सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्व व्यापक है, वह अकाल पुरख वाहगुरु, तो करता है सारी कायनात का। तो मनुख भी करता बनना लोचदा है, तो बन रहा है, यतन कर रहा है हर तरह के। सो अकाल पुरख वाहगुरु परमेश्वर के एक गुण ने जेडे उहदे अंदर, एक गुण करके ही उहदी कला उहदी ताकत का कोई अंदाजा नहीं, उहनूं मिणिया गिणिया नहीं जा सकता। मनुख की ताकत सीमित है क्योंकि वह आप सीमित हद बद्दी काल दे विच है। जेड़ी चीज काल समा स्थान, काल दा अर्थ है समा, समा ते स्थान दे अधीन है ना जेड़ी चीज, उहदी सीमा है, उस सीमा तो बाहर ही नहीं हो सकती। असीं किन्ने भी ताकतवर हो जाइए, हर बंदे दी ताकत दा समा है 10 साल, 20 साल, 100 साल, 50 साल, उहदी ताकत है, वह सीमा विच है, फिर समय विच है,
कारण विच कारण दे करके है तो उदू बाद मुक जाएगी, पर परमात्मा क्योंकि काल तो परे है, समय तो परा है, इस करके सीमा तो परे है, उदे बाबत कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता भी किन्नी ताकत का मालक है ते किन्ना चिर रहेगा। इंसान इंसान की ताकत का पावर का अंदाजा ला सकता है भी इहदे कोल 4 साल की ताकत है, इहदे कोल 10 साल की ताकत है, ये 50 साल राज करेगा, इन्ना चिर रहेगा। इंसान इंसान की ताकत का अंदाजा लांदा है ते लगता भी है ते मिटदा भी है इंसान, पर परमात्मा का ताकत ना सीमा विच है ना समय विच है, इस करके वह असीम है, उदे बाबत दस्या नहीं जा सकता, गिनती नहीं कीती जा सकती। हालांकि इंसान करता है, गुरु साहब जी ने अज जो पौड़ी विच कृपा कीती ना दी ताकत दसी है, खंड पताल असंख मैं गणत ना हुई। खंड दा अर्थ हुंदा टुकड़ा, टुकड़े दा भाव है यह धरती जिहड़ी है ना साडी एक खंड है, एक टुकड़ा है। ते गुरु साहब जी कहिंदे इहो जे टुकड़े पता नहीं किन्ने गुने इस ब्रह्मांड विच, इस यूनीवर्सल विच, असी उहदी गिनती नहीं कर सकदे, असी ते सिर्फ अपनी धरती नूं जानने आ, जां इस धरती ते दुआले जिहड़ियां धरतियां घूमदियां ने सिर्फ सानूं उहनां दी पछाण है, दिसदे सानूं सारा कुछ है, आसमान विच जिन्ने तारे चमकदे सानूं दिसदे ने, आसमान विच जो कुछ असी तारे चमकदे दिसदे आ, इह की ने, सारियां धरतियां ने, सारियां धरतियां ने खंड ने, ते सानू की पता। हालांकि ये यत्न किते जा रहे ने कि एहो जा जीवन जो इस धरती ते है किते होर भी है, बड़िया क्यासा कीतियां जांदियां, खोजा कीतियां जा रही ने, पर इस धरती दे पुलाड़ बारे ही मनुख खोज करदा पिया है, ते जे तक ये भी खोज संपूर्ण नहीं हुई, इस करके सोचदा भी सिर्फ इस धरती ते ही जीवन है, धरतियां ते पत अनगिनत ने, मनुख दी गिनती मुक जाएगी, मनुख गिन गिन के खत्म हो जाएगा, पर उदे धरती दे खंड नहीं गिने जा सकते भी एहो जे टुकड़े उन्ने किन्ने कु संसार विच, इस यूनीवर्सल विच, इस ब्रह्मांड विच सिरजे हुए ने। अनगिनत अनगिनत कहना भी यह भी साडी एक इउं कह लईए भी असमर्था है। अखंड खंड टुकड़े पाताल, पाताल दा अर्थ है भी धरती दे थले। हालांकि सियाने गल मनते ने साडी धरती का उपरला हिस्सा जिहड़ा नूं आकाश कह दिता है ते थलड़ा हिस्सा पाताल कह दिता है, पर सारा कुछ है पुलाड़ विच, सब कुछ जो है ना इस स्पेस विच ही घूम रहा है, साडी धरती भी स्पेस विच ही है, ते इस करके कोई आकाश पाताल उपरला थलड़ा हिस्सा नहीं, पर इस धरती ते असी उस स्थूल रूप विच रहने, इस करके समझाण दे लई कि जो कुछ सानू उपर नू वेखी दिसदा है ना कि साडे उपर किन्ने आसमान विच तारे टिमटिमाउंदे ने, समझो इन्नी साडी धरती तों थले ने, इन्ने ही पताल धरती दे थले भी लोक वसदे ने। खंड पताल असंख, असंख दा अर्थ है गिनती तो बाहर ने, संख नाम गिनती दा है, जिवें अजकल इत्थे गिनती है ना, अपनी इत्थे गिनती तां इउं है कि मिलियन विच है, बिलियन विच है, ट्रिलियन विच है, जिहड़ी साडी भारत की गिनती है ना, वह गिनती इस तरह है भी जिवें 100 सैकड़ा हुंदा है, उस तो बाद 1000 10000 लख अरब खरब, उस तो बाद संख असंख नील, इस तरह चलती गिनती, नील तो बाद गिनती खत्म हो जाती। असंख का अर्थ भी है भी वह संख्या विच नहीं आता, कोई भी संख्या मुकर्रर नहीं, जिस संख्या विच असी कह दिए कि इन्नियां परमात्मा ने धरतियां पैदा कीतियां ने, गुरु साहब जी कहिंदे उहदी बनाई हुई किरत असंख है, संख्या तो रहत है, क्योंकि वह आप असंख है, जिहड़ा आप असंख है उहदी किरत भी असंख है, गिणती च नहीं आ सकदी। खंड पताल असंख मैं गणत न होई, हे वाहिगुरु मेरे कोलों गिणती नहीं हुंदी, कौन गिण सकदा है, किदे विच ताकत है कोई गिण के दसे कि इन्ना इन्ना आसमान दे विच तारे ने, इन्ना, हालांकि अंदाजे बड़े लाए जांदे ने, सारे ला रहे ने कि एक मिलकी वे च इन्नियां जे तारे ने ते इन्नियां मिलकी वे ने, इन्नी हो सक, सब अंदाजे ने, झूठ अंदाजे ने, मनुख अपनी होमे नूं संतुष्ट करन वास्ते आखदा है, पर गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी बिल्कुल सच दे उपाशक ने, इस करके उन्होंने कहा सब अंदाजे, साडियां गिणतियां मिणतियां धरियां धराइयां रह जांदियां, बस यही कहना यही पूर्ण है कि वह असंख है,
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਮਿਣ ਕੱਥ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਸੱਤ ਪਤਾਲ ਮੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਪਤਾਲ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੱਤਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੱਤ ਪਤਾਲ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਤ ਗਿਣੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜੋ ਗਿਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਖੋਜਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜੋ ਮੈਂ ਗਿਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾਲ ਸੱਤ ਮੰਨੇ, ਸੱਤ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਨੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਦਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਤ, ਸਹਿਸ ਅਠਾਰਹ ਕਹਿਣ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਖੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪਾਤਾਲ ਗਿਣਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਤਲਖੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਉਪਾਸਕ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ਗਾਈ, ਨਾ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮਨੌਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਨੌਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਨੌਤ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੌਤ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੌਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਆਤਮਕ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਮਨੌਤ ਕਦੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੌਤ ਸਾਡੇ ਆਤਮਕ ਤਰੱਕੀ, ਆਤਮਕ ਉਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਮਨੌਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੌਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਕੀ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਮਨੌਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਨੌਤ ਤੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਖੋਜੀ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਢਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੌਤ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਜੇ, ਝਗੜਾ ਬਣ ਜੇ, ਫਸਾਦ ਬਣ ਜੇ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਬਣ ਜੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਭਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਪੀਰ ਦਸਤੰਗੀਰ ਦੇ ਉਮਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਫਰ ਪੇ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤ ਹੀ ਆਕਾਸ, ਸੱਤ ਹੀ ਪਤਾਲ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਫਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਨੂੰ, ਦਸਤਗੀਰ ਜੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ,
उस गल दी विचार करो, जे तुसी मैनू प्रभावित कर दो इस गल दी भी बिस इस तो वद नहीं तां मैं तुहाडी गल नाल सहमत हो जावांगा बिना शर्त तो खिमा मंग के। पर जे मैं तुहानू इस गल दे लई मना लवां भी मैं तां लखां कह रहा लखां तो भी अगिणत ने तां तुस तुहानू बिना शर्त मनना चाहिए। कह लगे पीर बड़ा तलखी विच सी, उहदे मुरीद बड़ी तलखी विच सन। भाई साहब भाई गुरदास ने इस घटना का हवाला दिता है ते एक क्या ना लिया बेटा पीर दा। गुरु साहब जी ने फिर पीर दस्तंगीर दे बेटे दी बांह पकड़ी ते उन्हों ना लै करके आत्मिक मंडल दे विच उन्हों ऐसे नजारे विखाए कि वो अख दे फुरकन दे टाइम तक वो पता नहीं किन्ने कु पतालां ते आकाशां दी सैर कर चुका सी। आत्मक तौर ते शरीर तो बाहर होकर ते जदों होश विच आया शरीर विच आया ते गुरु साहब सच्चे पातशाह जी कहिंदे दस अपने बाप नूं पिता नूं कि की गिनती किन्नी है। ते उन्हें भी कहा पिता जी मेरी मत इजाजत नहीं देंदी कि मैं इन्ने समय दे अंदर जो कुछ वेख्या उन्हूं गिन सकदा देख सकदा। आ साडी धरती समझ लो भी एक रेत दे कण तो निक्के कण तो भी छोटी है। इन्ना इत्थे संसार दे इस ब्रह्मांड विच उस अल्लाह ने उस खुदा ने रब ने जेड़ा है ये विधान बनाया होया गणत ना आवे। गणत नहीं हो सकती, गिनती नहीं हो सकती कि किन्ना कुए पसारा है किन्ना कुए वरतारा है, बेअंत है। गुरु साहब ने कहा अखंड पताल असंख मैं गणत न होई। हे वाहिगुरु मैं गिनती नहीं कर सकता। ये कुछ चीजा ऐसिया हुंदिया ने जिथे मत साथ छड़ जाए ना, जिथे मत हार जाए उथे अपने आप नूं भी समर्पण कर देना चाहिए। उहदे च ही बंदे नूं सुख मिलता है। मत विच पवे ना, दिमाग सुलझे सुलझावे ना उस सवाल नूं ते बंदा उलझ के रह जांदा है, फिर खुआर हुंदा है दुखी हुंदा है। इसे तरह गुरुदेव जी कहते कि उस परमात्मा की किरत नूं जे बंदा सुलझाण जाए ना तां उलझ के रह जाएगा। उस परमात्मा की किरत नूं कोई सुलझा नहीं, सुलझाण दा अर्थ इत्थे आ भी अपने अंत पा लए अपने वस कर ले। तां गुरु साहिब जी कह लगे इह खुआर ही होएगा, इहदे पल्ले कुछ नहीं मिलेगा। बहुत बहुत लोग अपना मानसिक तवाजन गवा देंदे ने, बहुत लोग गवा देंदे ने। उहदा कारण की है कि दिमाग की शक्ति हालांकि बहुत है पर फिर भी सीमित है ना। साड़ी ताकत साड़े इंद्रियां की ताकत सीमित है। असीम नूं लभण जावे तो यह फिर अपना आपा गवा देंगे। उहदे लई बेहतर है कि अपने आप नूं उहदे विच रख दिओ ते जां जो मालक ने जिन्ना दिता है उहदा गुणगान उन्ने च गाइए भी इन्ना को मैनूं सोझी दित्ती है मैं इन्ने विच ही राजी हाँ। इस करके दाता जी कहिंदे इस रजा विच रहना सिख ते आख मैं गणत न होई। हे परमात्मा गिनती नहीं कर सकता, मेरे विच ए समर्था ए पाया नहीं कि मैं तेरी गणना कर लवां तेरी किरत दी गिनती कर लवां। तू करता गोविंद तुद सिरजी तुद है गोई। तू करता है इस सारे ब्रह्मांड दा, तू करता करन वाला है। गोविंद गो नाम धरती दा, बिंद नाम सहारा देन वाला। गोपाल गो नाम धरती दा, पाल नाम पालन दा है। ये गोविंद परमेश्वर दा नाम है, गोपाल परमेश्वर दा नाम है, गुण तो बने है। गो नाम धरती दा है, हर धरती नूं पालदा है, इस करके उहदा नाम गोपाल है। बिंद दा अर्थ है सहारा दिंदा है आसरा है, इस करके उहदा नाम गोविंद है। हे वाहिगुरु तू करता है इस कायनात दा ते इहदा सहारा भी तू है, ये तेरे आसरे ते खलोती है। तुद सिरजी तू बनाई है, तुद गोई गोई दा अर्थ हुंदा गुण देना, गुण दा अर्थ कठिया कर देना। जिवें कहने ना आटा गुण दिता खिल रहा हुंदा उन्हूं गुण दिता जांदा कठा कर दिता जांदा, मिट्टी गुण दिती जांदी है। कहिंदे ये कायनात तू खलारी है सिरजी है ते जदों तेरी मर्जी है तू इहनूं गुण देना कठिया कर देना, तेरी ताकत दे पाणी भरदी है सारी कायनात। जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बड़ा सोहना कहा आप रोज पढ़ते हैं चौपाई साहब जी की बाणी विच, जब उद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आकरख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह धर सब हूं गोई। आकरखन ते उदकरखन ये दो शक्तियां ने। आकरखन का अर्थ है खला दी शक्ति,
ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਿੜਕਿਆ, ਛੰਡਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਛੰਡ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੂੰਦਾਂ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੰਡਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਖਿਲਰ ਗਈ, ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਾ ਹੈ। ਉਦਕਰਖਣ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪੇ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ ਤੁਝ ਹੀ ਤੇ ਹੋਈ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਮੇਦਨੀ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, 84 ਲੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਅਜੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੱਖਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਵ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਧਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 84 ਲੱਖ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਉਹੀ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਕਰਿਆ। ਇਹ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਜੁਨਾ ਨੇ ਗਿਣਤੀ। ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਅਜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ 42 ਲੱਖ ਜਈ ਜਲ ਮੈਂ ਹੋਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ 42 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ 84 ਲੱਖ ਬਣਦੀਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਭ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਜੂਨਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੇ ਜੀਵ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਦਨੀ ਦੀ ਜੁਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਦਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਲੱਖ ਮੇਦਨੀ ਤੁਝ ਹੀ ਤੇ ਹੋਈ, ਇਸ ਮੇਦਨੀ ਦੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਣੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਉਪਾਈ ਰਿਜਕ ਦੀਆ ਸਭ ਹੂੰ ਕੋ ਤਦਕਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਦਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ, ਇਹ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ ਜੋਗਾ ਬਣਾ ਲੈ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ, ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਸਦਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਉਪਾਈ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਰਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਰਿਜਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਜੂਨਾਂ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਜੂਨਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਰਿਜਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਤਾਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਖਨ ਕੀਟ ਗੁਪਤ ਚ ਹੋਏ ਰਹਿਤਾ, ਤਾਚੋ ਮਾਰਗ ਨਾਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ, ਖਾਣ ਦੀ ਰਿਜਕ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਖਣ ਕੀਟ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੀੜਾ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਰਹਿਤਾ, ਗੁਪਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਚੋ ਮਾਰਗ ਨਾਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ? ਪਰਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰ

मेदनी दी सृष्टि दी सारी जुना नू पैदा किता ते बनाया, हर एक दी रोजी दा उन्हें इंतजाम किता, हर एक दी रोजी दा, हर एक एक दी रोजी नू ने दिता है। इथों तक कि कुछ पंछी ऐसे ने जिन्हां नू कह भी जिहड़े मास खोर खूंखार जानवर ने ना, जिवें पानी दा खूंखार जानवर मगरमच्छ है, किड्डा वड्डा उहदा जबाड़ा है, किड्डे दंद ने, पर जदों अपने शिकार नू खा के धुप विच सुस्तांदा है ना, अपना जबाड़ा खोल के रखदा है, ते उन्हां दे जबाड़ियां विचों जिहड़ा निवाला उहने जिहड़ा अपना शिकार कीता हुंदा मास फसिया हुंदा उहनां दे दंदां विच। पर कहिंदे वाहिगुरू वेखो किड्डा कमाल दा, उहदे दंदां विचों मास कढ़न दे लई वी पंछी आ के उहदे दाड़ां विचों मास कढ़ के खा जांदा है, उहनूं उह कुछ नहीं कहिंदा वी जिहदे दाड़ विच इक वारी आ गया ते उहदियां हड्डियां नहीं लभणियां। पर वेखो जिदा उहने भोजन जिथे रखिया, शेर किड्डा खुंखार है, जदों उबासी लैंदा है उदों पंछी आ के उहदे दाड़ दे विचों मास दी बुरकी मास दा भोरा चुन के खा जांदा है ते वो अपना ढिड भर लैंदा है। ऐसे ऐसे जीव ने खुंखार तो खुंखार जानवर दे मुंह चो भी परमात्मा उन्हां नूं भोजन अदा फरमांदा है, अता करदा है, क्योंकि वह वाहिगुरु बड़ा दयाल है। इस करके दाता जी ने दसम पातशाह जी ने बचन कहने ना, दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनी मनगार है, पश पशु नग नाग निराधप सर्व समय सबको प्रतपार है, पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचार है। कहते किसी के कर्म वेख के नहीं करता, जिन्होंने पोखत है पालना है वो कहता मेरा बच्चा मैं पैदा किया है ना, मां कभी अपने बच्चे के कर्मा करके कहती अज तेन ये, हालांकि ताड़ना करके भावे कुछ कह दे पर मन च यह नहीं होंगे भी अज तो तेरा रोटी पानी बंद, तेन कुछ नहीं मिलना, तेन भुखा मारना है, कदी भी नहीं कर्म वेख के नहीं कहती। वह कहती तू खा पेट भर अपना, क्योंकि ममता है। गुरु साहब कहते परमेश्वर ने दोखण देखत है पर देत ना हार है। असी किन्ने दुख का किन्ने काम ऐसे करने हैं जेड़े रब नूं मंजूर नहीं, पर वाहिगुरु कहते कदी परमात्मा देंदिया थकता है, वो दोखण देखत है, साडे दुखां नूं साडे कर्मां नूं माड़ियां नूं वेखदा है पर देत ना हार है, फिर भी सानूं देई जांदा। ऐसे कर्म मनुख करता है भी जे किसी वो कर्म किसी दूजे बंदे दे किते हुए वेख ले ते कहे भी इस बंदे नूं मैं जानू मार दिया, रोटी देनी ते बड़ी दूर दी गल है, कम तमाम कर दिया, पर वाहिगुरु कहिंदे अपने ते निगाह मार, तेरे ऐसे कर्मां नूं देख के परमात्मा तेनूं पाल ही जा रहा, एक दिन नहीं दो दिन नहीं, जिदन तू तू जन्मया है उदन तो तेरी प्रतपालना कर रहा है। सो लख 84 मेदनी तुझी ते होई, एक राजे खान मलूक कह कहा मह कोई। इस मेदनी विच वाहिगुरु ने जेडे जीव पैदा किते ने कहिंदे इस तरह दे ने, एक ते निक्के निक्के कीट ने, पर वड्डे वड्डे राजे महाबली भी पैदा किते ने, राजे खान चौधरी बहादुर मलूक जेडे वड्डे वड्डे अहुदियां ते ने, कह कहा मैं कोई, अपने आप नूं वड्डे अखवाउंदे ने, वड्डे वड्डे बन के नाम तारीक हो करके रहिंदे ने, एक साहा सदा मैं शाद अर्थ है जिन्हां कोल पूंजी हुंदी पूंजीपति। कहिंदे ऐसे भी संसार विच आए ने जिहड़े अपने आप नूं पूंजीपति खवांदे ने, शाह खवांदे ने, संच धन धन इकट्ठा करदे ने ते शाह बन जांदे ने, दूजे पत खोई पर द्वैत विच लग के अपनी पत गवा बैठदे ने, अपने इज्जत आवरू गवा बैठते ने, क्योंकि दुविधा विच द्वैत विच लग के ही सारा कुछ हो सकता है। कहिंदे वड्डे वड्डे राजे शाह खान अमलूक मलूक वो सारे तो सिरजे, पर परमात्मा वो सारे द्वैत विच फस गए, अपनी पत गवा ली। एक दाते एक मंगते सबना सिर सोई, तू एक दर्थ ते एक ने एक दर्थ ते कई, हे परमेश्वर तू कई दाते बनाए कई मंगते बनाए, एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना, तेरे चोज ने किते मंगता बन के तू अपना रजा विच है ते किते राजा बन के रजा विच है, सबना सिर सोई सब दे उत्ते तेरी ही सार है, तू खबर लै रहा सब दी भावे कोई मंगता है भावे कोई दाता है, विण नावै बाजारिया, पर दाता जी कहिंदे नाम तो बिना वाहिगुरु दी कृपा तो बिना ते हुक्म तो बिना सब बाजारिया, बाजारिया दा अर्थ है सब तमाशा है, सब तमाशियां दा खेड है, सब बाजीगरी है,
सब माया का प्रभाव है। तिहावल होई ये बड़ा औखा होएगा अखीर विच बंदा।

नानक दास सत कुरबानी। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वाह श्री भगवती जी की पातशाही। दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लैं ते आए। फरंगत गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरां। श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए। जिस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरया। करनौ नदयावे ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दार का ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां सब जादियां चाली मुक्तियां अठियां जपिया तपिया जिन नाम जपिया वंड के छकिया। देग चलाई देग वाही देग के निठ कीता तिना प्यारिया सच्यारियां दी कमाई का ध्यान करके खालसा जी साहब बोलो जी। जिन्हां संगा सिंघणियां ने धर्म है सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरकड़ियां ते चढ़े। आरिया ने चराए गुरुद्वारा की सेवा लिये कुर्बानियां कीतियां धर्म ने आरिया सिखी के सत्संग निभाई इन्हों की कमाई का ध्यान रखे खालसा जी साहब बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारा का ध्यान रखे बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी गुरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चतावे चतावन का सत्ता सर्व सुख है जहां जहां खालसा जी साहब तहां तहां शरियाए। देखते फतेह ब्रत की पाए पंथ की जी। श्री साहब जी साहे खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इशना चौंकियां झंडे बंगे जुगो हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मर नीवा मत उच्चे मत पत करा का आप वाहिगुरु है अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा साहे दा तार जियो। श्री ननकाणा साहब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां जिन्हां तों पंथ नूं छोड़िया गया खुले दर्शन दार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो है नमाण्यो कमाण नितान्यो के तान लुटियां ते होर सच्चे पिता वाहिगुरु तान तान साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ। आप जी के चरणा च अरदास बेनती आप जी की महान बख्शिश हुई पावन हजूरी अंदर अपनी दे दीवान सजाएगा सजे हुए दीवाना में आरती शब्द कीर्तन चल रही लड़ी वार गुर शब्द दचारा उपरंत अमृत बाणी के शब्द कीर्तन होए महाराज जीओ। समुची सेवा निभाद बाणी पढ़द्या कीर्तन करद्या विचारा करद्या आप जी की सेवा संभाल करद्या हुई बेअंत भुला बख्श देनिया जी अगे वास्ते समर्थ बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी गायन कर बालू तुम बख्शिश करना जी बाणी का भाव आइया संगत हृदय वसौला आइया संगत की हारी दर प्रवान करनी सपना दिया तिल फुल पिटावा दर प्रवान करनी सपना दरों करो नामदान गौर सिक्की जीवन बख्शिश करना चढ़ती कला बख्शिश करनी कृपा करनी महाराज जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करना जी सुखों का प्रकाश करना देशा विदेशा विच रखिया बख्शिश करनी महाराज जी बिन संगता दूर दुराडे बिठे घर लाइव गुरबाणी के जाप सरवण कर रही हैं जाप सरवण कर दिया आप जी का धन्यवाद करते हैं बेंत महाराज गुरु घर वास्ते गुरु घर के सेवादारा संघा वास्ते ऑलन भेटा की महाराज जी सारी संगत की हारी दर प्रवान करनी सभना की माया सफली करनी किरत कमाइया बरकत पाया श्रद्धा भावना में संपूर्ण करनी जी आप दर घर के सेव भाई सुशांत सच देवा वाहगुरु जी का शुकराना करद गुरु घर वास्ते बेंत माया भेटा कर दिन कृपा करनी सेव प्राण की भेटा दर प्रवान करनी प्रवान चढ़ती कला बख्शिश करनी दर घर के सेव जसप्रीत सिंह नवी गड्डी का शुकराना करते अरदास बेनती करते कृपा करनी सेव परिवारों नवी गड्डी सुननी बख्शिश करनी राह पेंडे अंग संघ होकर सहायता करनी चढ़ती कला बख्शिश करनी कृपा करो महाराज जी। सिख पंथ एकता प्रेम भावना की दात बख्शिश करनी जी खालसा पंथ को चढ़ती कला बख्शिश करनी जी इस वेले दीवाना की संपूर्णता हुई पावन पवित्र हुक्मनामा बख्श के सारिया संगतान निहाल करो जी से गुरमुख प्यारे मिलना जिन्ना मिलिया आप जी का नाम चिताए नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा अग्या पही अकाल की तभी चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की जो प्रभु को मिल को चाहे खोज शब्द में राज करेगा खालसा आकी रहना

0: सगल पुरख मह पुरख प्रधान
1: साधु संग जाता मिटै अभिमान
0: आपस को जो जाने नीचा
1: सो गनिए सब ते ऊंचा
0: जाता मन होए सगल की रीना
1: हर हर नाम तिन कट कट चीना
0: मनु अपने ते बुरा मिटाना
1: एक है सगल श्रेष्ठ साजना
0: सुख दुख जन सम दृष्टिता
1: नानक पाप पुन नहीं लेपा
0: निर धन को धन तेरो नाओ
1: निथावे को नाओ तेरा थाओ
0: निमाने को प्रभु तेरो मान
1: सगल कटा को देवहु दान
0: कनकरावन हर स्वामी
1: सगल कटा के अंतर जामी
0: अपनी गल मित जन हो
1: आपन संग आप प्रभ राते
0: तुम्हें अस्तित्व ते हुए
1: नानक अवर न जा

0: ते सब काम
1: ज्यो किरपन के निरारथ दाम
0: तन तन तेजन जेकट बसे और नाऊ
1: नानक ताकर बल बल जाओ
0: अवर कछे अवर कमावत
1: मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत
0: जानन हार प्रभु प्रवीण
1: बाहर पेख ना काहू पीन
0: प्रभु देसे आव न करे
1: आवत जावत जन्म मर
0: के अंतर बस अहंकार
1: किसकी सीख तरह संसार
0: जो तुम पाने तन प्रभु जाता
1: नानक उन जन चरण पराता
0: करो बेंती पार ब्रह्म सब जाने
1: अपना किया आपे मन
0: आपे आप कतन वेरा
1: किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा
0: आप स्याणम सकल ते रहत
1: सब कर

0: आठ पहर सिमरहु तिस रसना
1: देह प्रसाद रंग रस भोग
0: नानक सदा त्याय त्यावन जोग
1: देह प्रसाद पाठ पटंबर हटावे
0: तिसे त्याग कत अवर लुभावे
1: देह प्रसाद सुख से सयुज्य
0: मन आठ पहर ताका जस गावी जय
1: देह प्रसाद सबको मन
0: मुख ताकू जस रसन बखान
1: देह प्रसाद तेरु रहता धर्म
0: मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म
1: सब जी जब जग है मान भाव है
0: नानक पात से ती घर जावे
1: देह प्रसाद कंचन देही
0: लिव लावो तिस राम स्नेही
1: देह प्रसाद तेरा ओला रहत
0: मन सुख पावे हर हर जस कहत
1: देह प्रसाद तेरे सगल चिद्र ढाके
0: मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताक
1: देह प्रसाद तुझको न पहुंचे
0: मन श्वास श्वास सिमरहु प्रभ ऊंचे
1: देह प्रसाद भाई दुर्लभ दे
0: नानक ताकी भगत करे
1: देह प्रसाद आप कन बहरी जय
0: मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय
1: देह प्रसाद अस हस्त असवारी
0: मन तिस प्रभ को कबहु ना बिसारी
1: देह प्रसाद वाग मिलक तना
0: राख पुरवे प्रभ अपने मना
1: जिन तेरी मन वंत बनाई
0: उठत बैठत सद तिसहते आई
1: तिसहते आई जो एक लक
0: इहां उहां नानक तेरी रख
1: देह प्रसाद करे पुन बोदान
0: मन आठ पहर कर तिसका ध्यान
1: देह प्रसाद तू आचार व्यवहारी
0: तिस प्रभ को सास सास चितारी
1: देह प्रसाद तेरा सुंदर रूप
0: सो प्रभ सिमरहो सदा अनूप
1: देह प्रसाद तेरी निकी जात
0: सो प्रभ सिमर सदा दिन रात
1: देह प्रसाद तेरी पत्र है
0: गुर प्रसाद नानक जस का है
1: देह प्रसाद सुने कर्ण नाद
0: जेह प्रसाद पेखा है बिसमाद
1: जेह प्रसाद बोल है मदस
0: जेह प्रसाद सुख सहजे बसना
1: जेह प्रसाद हस्त कर चले
0: जेह प्रसाद संपूर्ण फल है
1: जेह प्रसाद परम गत भाव है
0: जेह प्रसाद सुख सहज समाव है
1: ऐसा प्रत्याग वर्गत लाग हो
0: गुर प्रसाद नानक मन जाग हो
1: देह प्रसाद तू प्रगट संसार
0: इस प्रभ को मूल न मन हो विसार
1: देह प्रसाद तेरा प्रताप
0: रे मन मूल तू ताको जाप
1: देह प्रसाद तेरे कार्य पूरे
0: सहजान मन सदा हजूरे
1: देह प्रसाद तुम भाव है साज
0: रे मन मेरे तू तास्यों राज
1: देह प्रसाद सबकी गत होए
0: नानक जाप जपय जप सोए
1: आप जपाए जपय सुनाओ
0: आप गावाए सुहर गुण गाओ
1: कृपा ते होए प्रकाश
0: प्रभु दया ते कमल विगास
1: प्रभु सुप्रसन्न बस मन सोए
0: प्रभु दया ते मत उत्तम

0: अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी साधक संग मुख उजल होत,
1: संग मल सगली खोत।
0: साधक संग मिटै अभिमान,
1: साधक संग प्रगटे सुज्ञान।
0: साधक संग बुझे प्रभ नेरा,
1: संग सब होत नवेरा।
0: साधक संग पाए नाम रतन,
2: साधक संग एक ऊपर जतन।
0: साध की महिमा वर्णै कौन प्राणी,
2: नानक साध की शोभा ब्रह्म सुमानी।
0: साधक संग अगोचर मिले,
2: साधक संग सदा पर भुला।
0: साधक संग आवे बस पंचा, साध संग होए सब की रेन। साध के संग न कत हूं तावे,
1: संग स्थित मन भावे।
0: साध के संग माया ते पेना,
1: संग नानक

0: साध के संग नाही को मंदा
1: संग जाने पर मंदा
0: साध के संग नाही हो ताप
1: साध के संग तजे सब आप
0: आपे जाने साध बढ़ाई
1: नानक साध प्रभु बने आए
0: साध के संग न कबहू तावे
1: साध
0: संग बस अगोचर लह
1: साधु के संग
0: साध के संग बस थान ऊंचे
1: साधु के संग
0: साध के संग दृढ़ सब धर्म
1: संग केवल पार ब्रह्म
0: साध के संग पाए नाम निधान
1: नानक साधु के करवान
0: साध के संग सब कुल उधार है
1: संग साजन मिल कटन स्तर
0: साधु के संग सुतन पावे
1: संत सब को बरसावे
0: साध संग धर्म राय करे सेवा
1: साध के संग सब असुर देवा
0: साधु के संग पाप पलायन
1: साध संग मत गंगायन
0: साध के संग सर्व थान गम
1: नानक साध के संग सब जनम
0: साध के संग नहीं कश काल
1: दर्शन भेट दोत निहाल
0: साध के संग कलुख तहर है
1: साध के संग नरक पर है
0: साध के संग इहां उहां सोहेला
1: साध संग विषय तर मिला
0: जो इच्छा सोई फल पावे
1: साध के संग न मिटा जावे
0: पार ब्रह्म साध रिद बस है
1: नानक उतरे साध सुनस
0: साध के संग सुनो हर नाउ
1: साध संग के गुण गाओ
0: साध के संग नमन ते बिसरै
1: संग सर पर
0: साध के संग लगे प्रभ मीठा
1: साधु के संग कटकट मीठा
0: साध संग पै आज्ञाकारी
1: संगत पै हमारी
0: साध के संग मिटे सब रोग
1: नानक साध मिटे संयोग
0: साध की महिमा वेद न जाना है
1: जेता सुने तेता वचने
0: साध की उपमा ते हो गुण ते दूर
1: साध की उपमा रही भरपूर
0: साध की शोभा का नाही अंत
1: साध की शोभा सदा बेअंत
0: साध की शोभा ऊंच ते

0: जय श्री जन्म कमल अलेप
1: ज्ञानी सदा नरदोख
0: जय श्री सूर सर्प कौ शोक
1: ज्ञानी के दृश्यमान
0: जय श्री राज रंग को लागे तुल भवान।

0: सगळ त्याग्या दुष्ट का संग
1: मानते विंत सगला परम
0: पर पूजा सगल पार ब्रह्म
1: साध संग बाप अमल खोवे
0: तिस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की रहल करे नित नीत
0: मन तन अर्पय बिसन प्रीत
1: हर के चरण हृदय सर्व
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: तो पंडित जो मन पर बोध
0: राम नाम आत्म में सोद
1: राम नाम सारस पीवे
0: उस पंडित कहे उपदेश जग जी

0: नानक जीवै देख बड़ाई
1: का बल नाही साथ
0: करन करावन सर्ब को नाथ
1: अज्ञाकारी वपरा जियो
0: जो तिस पावै सोई फुन थियो
1: ऊच नीच में बसे
0: कबहु सोग हरख रंग हसै
1: कबहु निंचिंद व्यवहार
0: कबहु उप आकाश पाया
1: कबहु बेता ब्रह्म विचार
0: नानक आप मिलावन हार
1: कबहु नित करे वो पात
0: कबहु सोए रहे दिन रात
1: कबहु महाक्रोध विकराल
0: कबहु सर्ब की हो तरवाल
1: कबहू होए राजा
0: कबहू भिखारी नीच का साजा
1: कबहू अपकीर्त में आवे
0: कबहू भला भला कहावे
1: जो प्रभु राखे तभी रहे
0: गुर प्रसाद नानक सच का है
1: कबहू होए पंत करे बखियान
0: कबहू मोन धारी लावे ध्यान
1: कबहू तट तीर्थ स्नान
0: कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान
1: कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया
0: अनक जोन परमै परमिया
1: नाना रूप जो स्वागी दिखावे
0: ज्यो प्रभ पावै तिवै नचावै
1: जो तुस पावै सोई होए
0: नानक दूजा अवर न

0: सो होवत विष्टा का जंत
1: आवस्तो कर्म बंत कहावे
0: जन्म मरे बहु जोन ब्रह्मावे
1: तन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा ज्ञान
1: कर कृपा जिसके हृदय गरीब दिवसावे
0: नानक इहा मुक्त आगे सुख पावे
1: धनवंता होए कर गर्वावे
0: दृण सम्मान काश संग न जावे
1: बहु लस्कर मान कूपर करे आज
0: पल पीतर ताका होए विनाश
1: सब ते आप जन बलवंत
0: किन मैं होए जाए पसमंत
1: किसे न बधाए आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुरु प्रसाद जा का मेरे मान
0: सो जन नानक दरगह परवान
1: कोट कर्म करे उधारे
0: श्रम पावे सगले बिरथारे
1: मन से आ गए अहंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन करा तम नहीं द्रवे
0: हर दरगह कहो कैसे गवे
1: आप उसको जो पला कहावे
0: किसे पला ही निकट न आवे
1: कमन होए
0: कहो नानक ताकी निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कछ होए
0: तब इस को सुख नाही कोए
1: जब हे जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जून मैं फिरता
1: जब तारे को बैरी मीत
0: तब लग निचल नाही चीत
1: जब लग मोह मगन जंग माए
0: तब लग धर्म राय बे सजाए
1: तब कृपा ते बंधन टूटे
0: प्रसाद नानक हो छूटे
1: सहज कटे लाखावे
0: तृप्त न आवे माया पाछे पावे
1: अंग भोग बिगया के करे
0: नह तृप्ता वै खप खप मरे
1: बिना संतोष नहीं को राज
0: सुप्र मनोरथ बिर

0: वो सेवक कहो किस तेर डरे
1: जैसा सात ऐसा दृष्ट आया
0: अपने कार्य में आप समाया
1: सोद सीजिया
0: प्रसाद तात सब बूझिया
1: जब देखो तब सब कुछ मूल
0: नानक सो सुख में सोई असतूल
1: न कि जन्म न कि मरे
0: आपन चले तो आप ही करे
1: आपन जावन दृष्ट अंदृष्ट
0: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ
1: आपे आप सगर में आप
0: अनक युग तरच थाप उथाप
1: नासी नाही किस खंड
0: उदर है तिन मंत
1: सेवक सगल उदाहरण
0: रब के सेवक दुख बिसारण
1: आपे मेल लय कृपाल
0: का शब्द जप पे निहाल
1: उनकी सेवा सोई लागे
0: जिसनो कृपा करे बड पावे
1: राम जावत पावे विश्राम
0: नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान।

0: धर्म पर्ण जा का नेत्र फोर
1: जिसका मंत्र न जाने होर
0: आनंद रूप मंगल सद जा कै
1: सर्वतोग सुनिए करता कै
0: राज मैं राज जोग मैं जोगी
1: तप महत तीसर गृहस्थ मैं भोगी
0: त्याहे त्याहे भगत है सुख पाया
1: नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया
0: जाकी लीला की मित नाहे
2: सगल देव हारे
0: पिता का जन्म के जाना है पूत
1: सगल प्रवी अपने सूत
0: सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे
1: जन दास नाम दया वह से
0: गुण मैं जाको परमा

0: नाना चलित करे खिन माहे
1: पूरन सब ठाए
0: नाना विद कर बनत बनाई
1: अपनी कीमत आपे पाए
0: सब कट दिसके सब तिसके ठाओ
1: जब जब जीव नानक नाओ
0: नाम के तारे सगले जंत
2: नाम के तारे
1: खंड ब्रह्मंड
0: नाम के तारे सिमरत वेद पुराण
2: नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान
0: नाम के तारे आकाश पाताल
2: नाम के तारे सगल आकार
0: नाम के तारे पुरियां सब पवन
1: नाम के समुद्रे संत्रवन
0: कर कृपा जिसे आपने नाम लाए
1: नानक चौथे पद में सो जन गत पाए
0: रूप सत जाका सत अस्थान
1: सत सत केवल प्रधान
0: करतूत सत सत जाकी वाणी
1: सत पुरख सब माहे समाणी
0: सत कर्म जाकी रचना सत
1: मूल सत सत उत्पत
0: सत करनी निर्मल निर्मली
1: तिसे बुझाए तिसे सब फली
0: सत नाम प्रभु का सुखदाई
1: विश्वास सत नानक गुरु ते पाई
0: सत बचन साधु उपदेश
1: सत तेज जन जा के हृदय प्रवेश
0: सत निरत बूझे जे कोए
1: नाम जगदा की गत होए
0: आप सत किया सब सत
1: आपे जाने अपनी मेट गत
0: जिसकी श्रेष्ठ सुकरणे हार
1: अगर न भूल गत विचार
0: करते की मेत न जान किया
1: नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया
0: विस्मन विस्म पहे विस्माद
1: जिन बुझिया तिस आया स्वाद
0: प्रभ कह रंग राज जन रहे
1: गुर कह वचन पदार्थ लहे
0: वे दाते दुख काटन हार
1: जा कह संग तरह संसार
0: जन का सेवक सो वड भागी
1: जन कह संग एकल बिलागी
0: गुण गोविंद की

0: अपने जन का पर्दा ढाके
1: अपने सेवक की सर पर रखे
0: अपने दास को दे बढ़ाई
1: अपने सेवक को नाम जपाई
0: अपने सेवक की आपत रखे
1: आपकी गत मित कोई न रखे
0: के सेवक को न पूछे
1: के सेवक ऊंचते ऊंचे
0: प्रभु अपनी सेवा लाया
1: नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया
0: कीरी मैं कर रखे
1: भस्म करे लश्कर कोट लखे
0: का सास न काट आप
1: ताको राखत देख रहा
0: मान चिदन करत बात
1: जिसके कर्तव्य करते जात
0: मारे न रखे वरना कोई
1: सब जिया का रखा सोए
0: आहे सोच करे रे प्राणी
1: जप मानक पर लख बिडानी
0: बारंबार बार पर जपिए
1: पी अमृत हिमंत तंत्र पिए
0: अमृत अंजन गुण गोपाल।

0: सदति हव
1: मन बेचा सतगुर का पास
0: सेव के कार्य रासु
1: सेवा करत होए नह कामी
0: जिसको होत प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा जैसे आप करे
0: नानक सो सेवक गुर की मत ले
1: बीस बिस्वे गुर का मन मानना
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने
1: सो सतगुर जिस दिदा हर नाओ
0: अनक बार गुर को बल जाओ।

0: जो रचियो सुत सहतियात
1: भावे जिस लय मिलाए
0: भगत करे हर के गुण गाए
1: मन अंतर विश्वास कर मानिया
0: करन हार नानक एक जानिया
1: जन लागा हर एक कह नाए
0: जिसकी आस न बरसी जाए
1: सेवक को सेवा बनियाई
0: हुकम बोझ परम पद पाई
1: इसते ऊपर नहीं बीजार
0: जाते मन बस यान

0: अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डिठा
1: राम प्रभु का लागा मीठा
0: सगल समगिरी एक अस्कट माहे
1: अनक रंग नाना रहता है
0: नौ निधि अमृत प्रभ का नाम
1: यही महेश का गज राम
0: सुन समाद अनहत तहनाद
1: जाई

0: आवन जान
1: हर कथन खाट चला जन सोए
0: नानक जिसह परापत होए
1: एव सात रिद्ध नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध
1: विद्या ताप योग प्रभ ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रगास
0: सब कै मध्य

0: असंख मलेश मल पाथ, असंख निंदक सिर कर पार।
1: नारक नीच कहा विचार, वारिया न जावा एक बार।

0: अमल तल अमल परवान
1: अमोल बख्शीश अमोल निशान अमोल कर्म अमोल फरमान
0: अमोल आख्या न जाए आख आख रहे लिवला।

0: रूप तथा घाट घड़िया बहुत अनूप।
1: कथियां गल्ला कथियां न जाहे जेको कह पिछे पछताए।
0: तथा घड़िया सुरत मात मान बुद्ध तथा घड़िया सुरा सिद्ध।

0: एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहेगुरु जी की फतेह जाप श्री मुख वाक पातशाही दसवीं शपै संत प्रसाद चक्र चिहन अर वर्ण जात अर पात नहिन जेहे
1: लोभ रंग अर

0: नमो नर्कनासे सदैवं प्रकाशे
1: अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते
0: परमादं परमाते सदा सर्वसाते
1: अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते
0: अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे।

0: मानव इंद्र गजेंद्र निराधप जौन त्रिलोक को राज करेंगे।
1: कोट स्नान गजान गदान अनेक सोमवर साज परेंगे।
0: महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसे जम

0: कोई अबर ना त्यां
1: जो बर चाहो तो तुमसे पाओ
0: सेवक सिख हमारे तारियन
1: जन जन सतर हमारे मार यह
0: हाथ दे मुझे अमरिय
1: मन काल का त्रास न भरिया
0: जो सदा हमारे पश्चा
1: करिया तो जो कर हर अच्छा
0: रख लो मोहे रखन हारे
1: साहेब संत सहाय प्यारे
0: तीन बंदिष्टन के हंता
1: तुम हो पुरी चतर दस कंता
0: काल पाए ब्रह्मा बिपतरा
1: काल पाए सब जुग अवतरा
0: काल पाए कर विष्णु प्रकाश।

0: सगल प्रजाजन आप सवारी
1: कण को सब गुण सुख दियो
0: सत्रन को पाल मोह बाद कियो
1: कट के अंतर की जानत
0: भले बुरे की वीर पहचानत
1: बीते कुंचर सुला
0: सब पर कृपा देट कर फूला
1: संतन दुख पाए ते दुखी
0: सुख पाए साधन के सुखी
1: एक की पीत पछाने
0: काट काट के पट पट की जाना
1: जब उद कर करा कर तारा
0: प्रजा धात

0: दुष्ट दोग ते लेहो बचाई
1: करी हम पर जग माता
0: ग्रंथ करा पूर्ण सब राता
1: सकल देवी को हरता
0: दुष्ट दोग हिन को क्या करता
1: तुझ पे जे अल्लाह
0: पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला
1: बाशत पल पावे सोई
0: दुख न दशा व्यापत कोई अडल
1: सुने गंग जाय सर सना पावे
0: सुने मोड़ जत लाए चतुरताया वही
1: दुख दर्द पौ नित्य न

0: समरथ कोय नाही कृपा करमन वारिया
1: नाही दल लाल सवारिया
0: वजू क्या करे बेचारिया
1: आनंद आनंद सबको कहा आनंद गुरु से जानिया
0: जानिया आनंद सदा गुरु से कृपा करे प्यारिया
1: कर कृपा गलव कटे ज्ञान अंजन सारिया
0: जिनका मोह टुटा तिनका सब सचे सवारिया
1: कह नान के हो आनंद है आनंद गुरु से जानिया
0: तू दे सोई जन पावे पावे तो सो जन दे जिसनु होर क्या करे बेचारिया
1: एक बार भूले एक नाम लाग सवारिया
0: प्रसादी मन प्यार निर्मल जिना पाना पावे
1: कह नानक जस दे प्यारे सोई जन पावे
0: संत प्यारो अकत की करे कहानी
1: करे कहानी अकत केरी गत द्वारा पाईया
0: मन तन सब सौ गुर को हुक्म मन ने पाई।

आए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास है हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है

पावन हजूरी विच अमृत वेले दे दीवान सजे सजे दीवाना अंदर आप जी की अमृतमई बाणी श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ अते नितनेम बाणियां दे पाठ संति रूप विच कीते गए ग्रीव नवाज आप जी की अगाध गोध बाणी दे पाठ करदियां आप जी के दसरिया पासों हुई बेअंत बेअंत भुला आप

प्रदान करनी। सतगुरु जी अमृत वेले बेअंत संगता ने आप जी के पावन चरण कमलों विच हाजरिया भरिया तिल फुल पेटावा माए आप जी के चरणा विच अर्पण की। सतगुरु जी कृपा करनी दर आई समू संगत दी हाजरी दर ते प्रवान करनी। तिल फुल भेटा दर ते प्रवान कर लैनी सबना नू दरों घरों नाम दान गुरसिखी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजना किरत कमाइया विच वादे पाउने घरा परिवारा विच सुख वरताउनी बच्चिया दे सिर ते मेर भरिया हथ रखना चढ़दिया कला बख्शिश करके नवाजना। सतगुरु जी बेअंत संगता ने मीडिया के माध्यम राही हाजरियां भरिया सेवावां भेजी।

दुई कुदरत साजियां करया संगठ हो चाओ, दाता करता आप तो तुझ दे वह करे पसाओ, तू जानो ये सब सह दे लै सह जिंद कवाओ, करया संगठ हो चाओ, करया संगठ हो चाओ।

पौड़ी बिन सतगुरु किने न पाया, बिन सतगुरु किने न पाया। सतगुरु विच आप रखियो, उनकर प्रगट आप सुनाया। सतगुरु मिलिया सदा मुक्त है, जिन विच मोह चुकाया। उत्तम विचार है, जिन सच्चे स्यों चित लाया।

पौड़ी सिर की किसन पोखे जिन्नी सचो सच ते आया उन्नी मंदा पैर न रखियो कर सुकरे धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंद ना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवह चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

0: हिकमत हो जत संजय करह प्यार। धर्मी धर्म करह गावा वह है मंगह मोख द्वार। जती सदा वह है जुगत न जाने छड बह कर बार। सबको पूरा आपे हो वह घट न कोई आख है। पट परवाना पिछे पाई है ता नानक तो लिया जापे महला पहला।
1: बदी सुबजग नानका सच्चा विखे सोय सबने शाला मारिया।

सिल पूजस बगल समादं मुख झूठ भूखण सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक ललाटं दुज धोती वस्त्र कपाटं जी जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट ने।

पुरुष नृपो नृवर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच हैपी सच नानक हसी पी सच जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावा बोल न जाना माया मधुमता मरना चीत न आवा मेरे राम राय तू संता का संत तेरे तेरे सेवक को भौ किश नहीं जम नहीं आवै नेरे बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहा सेवक जन माना परतख गुरु निसतार ना हो जती सती नहीं पढ़या मूर्ख मुग्धा जन्म भया प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया अमा दृष्ट सब करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसा दुख संसार खुआ गुर नव निधा दरियाओ जन्म हम काल खो तुआ सुखो टल गुर सेविया अहनस सहज सभा दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाय सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी श्लोक महला दूजा जिन्नी चलन जानिया से क्यों करहे विथार चलना सार न जाननी काज सवारण हार जिन्नी चलन जानिया से क्यों करहे विथार चलना सार न जाननी काज सवारण हार महला दूजा रात कारण धन संचिया पलके चलन होए नानक नाल न चलई फिर पछतावा हो महला दूजा बद्धा चट्टी जो भरे ना गुण ना उपकार सेती खुशी सवारिया नानक कारज सार महला दूजा मन हठ तरफ न जिपई जे बहुता काले तरफ जिना सत पाओ दे जन नानक शब्द विचारे पाओ
ਵਾਰੀ ਕਰਤਾ ਕਾਰਣ ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਉਪਾਈਅਨ ਆਪੇ ਫੁਨ ਗੋਈ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਸਭ ਭਵ ਥਕੀ ਕਿਨ ਕੀਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਏਕ ਵਿਖਾਲਿਆ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਆ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ ਗੁਰ

एक शब्द की हाजरी सारी संगत मिल करके लवाना करिए जी। फिर दसरिया का समा समाप्त होवेगा। मन मेरे गहो हर नाम का ओला, तुझे न लागे ताता चोला। करो कृपा सारी संगत रसना नु पवित्र करिए, गरीब नु आ सके पातशाह जी दे पावन दर दियां हाजरियां बड़े प्यार दे नाल संगतां पर रहियां हन। अज बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चियां नु नाल लेके आए ने स्कूल दा। अज पहला दिन है सैशन दा। गुरु कृपा करे सतगुरु सच्चे पातशाह बच्चियां दे सिर ते मेहरां भरिया हथ रखण। बच्चियां नु कीर्तन दियां दातां गुरबाणी पढ़न दियां दातां झोली विच पा के नवाजना करन। गुरु प्यारियो पंजाबी दे नाल अपने बच्चियां नु जरूर जोड़ो, गुरमत दे नाल अपने बच्चियां नु जरूर जोड़ो। खालसा स्कूल विच एडमिशन अजे भी ओपन है, सो आप जी अपने बच्चियां नु दाखिल करा के पंजाबी पढ़ा के गुरमत पढ़ा के बाणी दी संथ्या करा के इतिहास पढ़ा के उन अपने बच्चियां नु योग बनाओ, ताकि बच्चे आउण वाले अपने फ्यूचर विच बाणी दे नाल जोड़ सकन, गुरु घर दे नाल जोड़ सकन, सेवा सिमरन दे नाल जोड़ सकन। सवाओ में ज्यादा समा आप जी का नाम लवां। करो कृपा मिल करके शब्द गायन करिए।

सिख संघ रो दुष्ट जिथे उठवा तिथ तो पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस दोजता शरणी परे तिनके दुष्ट दुख हुआ मरे पुरख जमन पग परे थे हारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं ताके कारण नहीं आए हैं रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट फेन तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो ताके तार तन कमै हर हो रे सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शास सकन कोई। एक बार जिन तुम्हें तो सुभारा काल फांसे ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दार्द दुष्ट दोख तेरा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी। आप हाथ दयाले हो बारी सर्व ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दयाले हो बारी सर्व ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की।